0: हेलो हेलो,
1: आए सर जी
0: वही रे भैया
1: वही
0: बयान या कोड़ी भैया।
1: को अगुआ बूंदगी दियोनी किन सब नहीं किया जाएंगे मारिंग लेकिन नॉन को गुआ तेरे तुम्हें गॉड काउंट ना इगुल को गुआ तुम जाता दारू ना ऐसी ना न्यू गुआ तभी है ना इंचे ना बोंगो न्यू सपोर्ट यासनी
0: kunyara mangana maya sinchire yo wenge anonsi soverete ngaya rete gare tege sakuru ko nyaka bamana inchi mara yo tonyana ngama ngana maya sinchire yo wenge na kunyira ko nyaka bamana inchi cheza cheza ni ko nda sister 779 hash elinde le nyore libagali ge yali ko nda cheza cheza ko nda sister 779 hash elinde le nyana ko ba go